0: ये खबरें सदाए तुर्किये की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्क रूबियो ने शामी वज़ीर ख़ारिजा हसन अल-शिबानी से इलाके इस्लामती दोनों ममालिक के माबैन ताउन इजाफे के हवाले से गुफ्तगू की। महकमा ख़ारिजा के तर्जमान टोमी पेगोट के मुताबिक रूबियो ने शामी अक़लियती ग्रुपों के मुसलसल इंज़माम की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी जो जौहरी सरगर्मी की निगरानी जौहरी तवानाई के पुरअम इस्तेमाल की तरवीज की जिम्मेदार है से शाम के ताउन को भी सराहा। शामी वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान में कहा, इस बातचीत में दोनों ममालिक के बाहमी तअल्लुकात इन्हें फ़रोग़ देने और ताउन मजबूत करने के तरीकों पर बातचीत हुई है। बयान के मुताबिक अल-शिबानी के मुल्क पर आयद पाबंदियाँ हटाने पर अमरीका का शुक्रिया भी अदा किया। बयान में कहा गया है कि इस दौरान खत्ते की सूरतेहाल पेशरफ्तों के साथ साथ सियासी और इक्तसादी दोनों सतहों पर इलाके इस्तेहकाम की हमायत में शाम के अहम किरदार पर भी गुफ्तगू की गई है।
2: अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के सरबराह वॉल्कर टर्क ने कहा है कि गजा के कई इलाके जहाँ इसराइली अफवाज तैनात हैं वहाँ बुलडोजरों के जरिए मुसलसल तबाही मचाई जा रही है और मलबे तले दबी लाशों का कोई एहतराम नहीं हो रहा। वॉल्कर टर्क ने बताया कि वहाँ से ऐसी बाकियात निकाली जा रही हैं जो बज़ाहिर पूरे पूरे ख़ानदानों की मालूम होती हैं, और जबकि उन्होंने मुतनब्बे किया कि यह हौलनाक इनकशाफात महज एक शुरुआत हो सकते हैं। उन्होंने जारी कानूनी कार्रवाइयों के पेश नज़र इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के शवाहिद को महफूज रखने की ज़रूरत पर जोर दिया और मुतालबा किया कि बैनुल अक़वामी तफ्तीशकारों को गजा के तमाम हिस्सों तक रसाई दी जाए।
1: रूस का कहना है कि खलान हथियारों की दौड़ को रोकने के लिए फील्ड फोर ठोस इकदाम उठाए जाने चाहिए। रूसी वजारत खारजा की तर्जमान मारिया ज़ाहारोवा ने अमरीकी फजाई के सेक्रेटरी ट्रॉय मैंग के बयान के हमें खला में कंट्रोल करने के लिए लाजमी हथियार मौजूद हैं पर अखबारी नुमाइंदों को अपने चाय से पेश किए। ज़ाहारोवा ने कहा कि अमरीका इस मामले तखरीबी पॉलिसी अख्तियार किए हुए इसके मनफी नतज निकल सकते हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा, वाशिंगटन अपने तंग नजर मफादात के लिए खला में मुमकिन किसी भी मुसलह तनाज के इंसानियत के लिए तबाहकुन नतज को बिल्कुल नजरअंदाज करने पर तुला हुआ है। यह खलाई सरगर्मियों ममालिक के खिलाफ पर तहकीकत के मौके के लिए खतरात भी तश्कील देता है जो कि कुरा अर्ज पर मुतद समाजी व इकतसादी मिसाइल की राह हमार करेगा। खला में

क्या आप उन लोगों में से हैं जो सुबह बेदार होते ही कॉफी मशीन का रुख करते हैं? तो फिर ये पॉडकास्ट आपके लिए ही है। अगर ये इस्तेमाल बकसरत हो, एक दिन में कितने कप बहुत ज्यादा तस्वर किए जाते हैं, और क्या कैरमल और क्रीम वाली इंस्टेंट कॉफी को वाकई कॉफी के तौर पर माना जाता है? वो लोग जो सुबह आंख खुलते ही कॉफी मशीन का रुख करते हैं, वो लोग जो अपने मसरूफ काम के निजाम औकात के दौरान अपने कप को मुसलसल भरते रहते हैं, वो जो तवनाई को बहाल करने के लिए कैफीन के बगैर नहीं रह सकते। कॉफी अब बहुत से लोगों के लिए एक आदत से बढ़कर है, ये तकरीबन एक रस्म है, लेकिन इस सवाल भी कसरत से पूछा जा रहा है कि कॉफी का ज्यादा इस्तेमाल जिस्म पर कैसे असरअंदाज होता है। आज हम एक माहिर के साथ सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर जमील ताश जी ओलो सिटी अस्पताल में एंडोक्राइनोलॉजी और मेटाबॉलिज्म डिजीज क्लिनिक के माहिर डॉक्टर सेजिन तुआन चाकर ने कॉफी के इस्तेमाल के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल के बारे में टीआरटी खबर चैन को आगाही कराई है। आइए पहले कुछ वाजह करते चलें। कॉफी बजात खुद एक नुकसानदेह मशरूब नहीं है, डॉक्टर चाकर ये कहते हुए शुरू करते हैं। हकीकत में जब सही मिकदार में और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इस सेहत के लिए अहम फायदे फराहम कर सकती है। तयन करने वाले अवामिल, मिकदार, तरीका इस्तेमाल और फर्द की मजमू सेहत हैं। तो कॉफी क्यों हमें बेदारी का एहसास दिलाती है? कॉफी का बुनियादी असर इसकी कैफीन के इज्जा से ताल्लुक रखता है। कैफीन दिमाग में एडियोसिन रिसेप्टर्स आर्जी तौर पर दबाव डालती है, जिससे थकावट का एहसास होता है। ये वजह है कि आप ज्यादा बेदार, खशाश बशाश, तवज्जो मरकूज महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अहम नुक्ता भी है जिस पर डॉक्टर चाकर का इंतबाह बहुत वाज है। कैफीन हकीकी थकावट को दूर नहीं करती, पास कुछ मुद्दत के लिए उसे मुलतवी कर देती है। अगर आपको दिन भर कॉफी की बढ़ती हुई जरूरत महसूस होती है तो इसके पीछे अक्सर दीगर वजूहत होती हैं, जिससे नाकाफी नींद, दायमी तनाव या खुराक लेने की बेकायदगी। कॉफी की मुस्तकिल जरूरत बाज़ औक़ात जिस्म की तरफ से एक अहम इशारा भी हो सकती है। तो आइए देखते हैं साइंस कॉफी के बारे में क्या कहती है। हाल ही मुतालियात में कुछ इंतहाई हैरान कुन नतज सामने आए हैं। 2025 में शाया होने वाले एक जामे जायजे के मुताबिक रोजाना 3 से 5 कप कॉफी का इस्तेमाल दिल की बीमारियों, टाइप 2 डायबिटीज, फॉलिश, इल्मी कमी और कैंसर के कुछ अकसाम के कम खतरे से मुंसलिक है। इससे भी ज्यादा ताज्जुब अंगेज एक और दरियाफ्त भी है। वो अफराद जो बाकायदगी से लेकिन इतदाल के साथ कॉफी नोश करते हैं, इनकी उम्र तवील हो सकती है। डॉक्टर चाकर ने निजाम हाजमा के नुक्ता नजर से एक दिलचस्प तस्वीर कशी भी की है। कॉफी में पाए जाने वाले क्लोरोजेनिक एसिड्स और सैकड़ों बायो एक्टिव मरकबात सोजिश को कम कर सकते हैं, ऑक्सीडेटिव तनाव पर मुस्बत असरात मरतब कर सकते हैं, इंसुलिन की हसासियत में मुआविन बन सकते हैं। जब दिमागी सेहत की बात आती है तो भी ये तस्वीर उम्मीद अफजा है। ऐसे मुतालियात हैं जो ये बताते हैं कि रोजाना 2-3 कप कैफीन वाली कॉफी डेमेंशिया यानी जहनी सलाहियत सुस्त, इल्मी कमी के खतरे में गिरावट ला सकती है। ये ख्याल किया जाता है कॉफी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीफेनोल रुकी सेहत, ऑक्सीडेटिव तनाव और सोजिश पर मुस्बत असरात मुरतब करके दिमागी अफाल को सहारा देते हैं।

दोस्तों बारी आती है दूध क्रेमल क्रीम और फ्लेवर कॉफी की। डॉक्टर चक्र यहाँ एक बहुत अहम फर्क की तरफ इशारा करते हैं। मुदरजा बाला तमाम साइंसी मुतालियात उमूमी तौर पर सादा कॉफी से ताल्लुक रखते हैं, टर्किश कॉफी, फिल्टर कॉफी और बिला मिलावट के मशरूबात। सुपरमार्केटों में वसीब माने पर फरोख्त होने रेडीमेड आइस्ड कॉफी, चीनी, वनीलिया और क्रेमल के खामी मशरूबात मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ जुमरे में आते हैं, क्योंकि इन मसनूआत में नुमाया मकदार में शामिल चीनी, क्लोरीज और मसनू साके मौजूद हो सकते हैं। इन मशरूबात का बकसर इस्तेमाल निज़ाम हाजमा पर मनफी असरात मुरतब कर सकता है, खासतौर पर अफराद में जो इंसुलिन के खिलाफ मुजामत, मोटापा या मेटाबोलिक सिंड्रोम के खतरात से दो चार हैं। यानी किस्सा मुख्तसर कॉफी और कॉफी पर मबनी मीठी मशरूबात एक ही चीज नहीं। तो एक दिन में कितने कप बहुत ज्यादा तस्वर किए जाते हैं? डॉक्टर चक्र का कहना है कि रोजाना तकरीबन 400 मिलीग्राम कैफीन या औसतन 3-4 कप कॉफी सेहतमंद बालगों के लिए महफूज समझी जाती है। इस तरह से ऊपर का इस्तेमाल कुछ अफराद में तेज धड़कन, बेचैनी, मैदे के मसाइल, ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव, नींद की खराबी का मूजब बन सकता है। और हाँ, इसके औकात इतने ही अहम है जितनी मकदार। नई तहकीक से इस बात का तयन हुआ है कि सुबह के वक्त नोश की जाने कॉफी दिन के बाद फैलने वाली खपत के मुकाबले में ज्यादा मुस्बत कल्बी सेहत से अवस्था हो सकती है। अगर आपको बेखाबी के मसाइल हैं तो सुबह तक कॉफी को महदूद रखना खास तौर पर फायदेमंद साबित हो सकता है। आखिर में डॉक्टर चाकर इस बात पर जोर देते हैं कि दर्जे सैल ग्रुपों को कॉफी के बारे में ज्यादा मुहतात रहना चाहिए। वो लोग जिनको अरिथमिया, हाई ब्लड प्रेशर, पेट की मिसाइल, इज्तराब की खराबी या ऑस्टियोपोरोसिस है, वह हमला खवातीन के लिए कतई तजवीज है। योमिया कैफीन की मकदार 200 मिलीग्राम से कम रखी जाए। हमारी आज की पॉडकास्ट का लब्बे लुबाब कुछ यूं है, काफी सही मकदार में सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो ये एक बहुत ही फायदेमंद मशरूब है। लेकिन जैसा कि तमाम अच्छी चीजों की तरह इत्तेदाल पसंद ही इसकी कुंजी है। हमारी अगली पोस्ट तक खुद इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।